0: Inner Voice, Miss Scott, Admiral Radio.
1: मगर वो जवाब भी कविता में होना चाहिए।
2: भई ये तो तुम्हारी जाती है। खैर, हाँ, वो सवाल तो बताओ।

0: नमस्कार दोस्तों, इनर वॉइस रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रेम और मेरे साथ है
1: मैं हूं एरोशनेका
2: एंड मी अल्फोंस
3: एंड मी लॉरेंस
4: एंड आई एम जोफ्री पॉल।

0: that meets our present needs without compromising the ability of the future generation to access clean and safe water. This includes protecting our natural water resources such as rivers, lakes, and wetlands from pollution and overuse. It also calls for efficient use of water in agriculture, industries, and households, ensuring that no drop is wasted. This importance is highlighted in Sustainable Development Goal 6, Clean Water and Sanitation for All. By practicing sustainability, let us commit ourselves to responsible water use and build a secure future for all.
1: प्रिय श्रोताओं, आप सभी ने अभी जल के महत्व, जल संकट और जल के समाधान के बारे में सुना है। जल जीवन का अमूल्य संसाधन है, हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए और जल की बर्बादी से निरंतर बचना चाहिए। जल है तो कल है, इस बात को हमें समझकर जल संरक्षण के लिए अत्यंत प्रयास करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको अवश्य इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिली होगी। अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं, इनर वॉइस रेडियो सुनते रहें, जल के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहें। जल है तो जीवन है।

0: हेलो एवरीबडी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वड़कम, जो आपको पसंद हो वो ले लीजिएगा, बिकॉज दिस इज द इनर वॉइस रेडियो और आप सुन रहे हैं आरजे सिमरन को. बाय द वे, मुझसे कहा गया था ऐसा बोलने के लिए, बट व्हाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट द इनर वॉइस रेडियो आई वेंट टू माय कॉन्वेंट. यहाँ पर आकर मुझे अपने स्कूल की याद आ गई एंड those were some of the most amazing memories of my life. But you guys are really lucky कि आपके पास इन अ वॉइस रेडियो है, एक ऐसा रेडियो स्टेशन जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे सारे सपने, हमारे सारे एम्बिशंस, हमारी सारी उम्मीदें सच हो जाएंगी. आई एम टोटली इन लव विद दिस रेडियो एंड आई वुड लाइक टू साइन ऑफ बाय सिंगिंग टू लाइन्स ऑफ दैट वन सॉन्ग विच कम्स टू माई माइंड, जो हमारे स्कूल में हमेशा हमें सिखाया जाता था. आई वॉज इन अ कॉन्वेंट इन लखनऊ, माउंट कामल, देन आई वॉज इन लोरेटो. मेक मी अ चैनल ऑफ योर पीस, वेयर देयर इज हेट्रेड लेट मी सो योर लव, वेयर देयर इज इंजरी योर पार्डन लॉर्ड, एंड वेयर देयर इज डाउट ट्रू फेथ इन यू. इफ यू कीप लिसनिंग टू द इनर वॉइस रेडियो, आई एम श्योर यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट.
1: Scott Agnell Radio.
2: और अब हमारे साथ है मनोज जॉर्ज, जो की है वायलिनिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, जिन्होंने जीता था ग्रैमी अवार्ड्स फॉर द बेस्ट न्यू एज एल्बम इन 2015, जो हमें बेस्ट विशेस दे रहे हैं.
3: I'm so happy to hear that Niscott and Father Agnell Charities have come up with a new web radio called Inner Voice Radio. This is definitely a milestone in the history of Niscott, and I congratulate the whole team behind this. I'm sure this initiative is going to develop a happy and loving community among us. I wish them all the success and pray to the Almighty to make this venture to spread the message of love and harmony to the whole world. Thank you.
1: Scott Agnell Radio.
2: और अब हमें आरजे नावेद हमें बेस्ट विशेस दे रहे हैं.
4: Niscott Media College, like I enjoyed a lot. I can say this, मुझे अब तक सबसे ज़्यादा मज़ा आया किसी स्टूडेंट से बात करके, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं बहुत सारे मीडिया इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, बट यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे ये चीज़ें बताई हैं कि आपको ऐसे बोलना चाहिए. So and I'll keep coming. Miss Scott भी मैं आता रहूँगा और Miss Scott को भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तैयार हूँ. रेडियो मिर्ची एंड Miss Scott लाइक एक चीज़ हो गई, सिंपल एक चीज़. थैंक यू सो मच.
1: In a voice, Niscott Agnell Radio.

0: हेलो एवरीबडी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वड़कम, जो आपको पसंद हो वो ले लीजिएगा, बिकॉज दिस इज द इनर वॉइस रेडियो और आप सुन रहे हैं आरजे सिमरन को. बाय द वे, मुझसे कहा गया था ऐसा बोलने के लिए, बट व्हाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट द इनर वॉइस रेडियो, आई वेंट टू माय कॉन्वेंट. यहाँ पर आकर मुझे अपने स्कूल की याद आ गई एंड दोज वर सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मेमोरीज ऑफ माय लाइफ. बट यू गाइज आर रियली लकी कि आपके पास इनर वॉइस रेडियो है, एक ऐसा रेडियो स्टेशन जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे सारे सपने, हमारे सारे एम्बिशंस, हमारी सारी उम्मीदें सच हो जाएंगी. आई एम टोटली इन लव विद दिस रेडियो एंड आई वुड लाइक टू साइन ऑफ बाय सिंगिंग टू लाइन्स ऑफ दैट वन सॉन्ग विच कम्स टू माई माइंड, जो हमारे स्कूल में हमेशा हमें सिखाया जाता था. आई वॉज इन अ कॉन्वेंट इन लखनऊ, माउंट कामल, देन आई वॉज इन लोरेटो. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me sow your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there is doubt, true faith in you. If you keep listening to the Inner Voice Radio, I'm sure you'll know what I'm talking about.
1: Inner Voice, Niscot Agnell Radio.
2: और अब हमारे साथ है मनोज जॉर्ज, जो कि है वायलिनिस्ट, म्यूजिक कंपोजर, जिन्होंने जीता था ग्रैमी अवार्ड्स फॉर द बेस्ट न्यू एज एल्बम इन 2015, जो हमें बेस्ट विशेस दे रहे हैं.
3: I'm so happy to hear that

0: नमस्कार दोस्तों, इनर वॉइस रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रेम और मेरे साथ है
1: मैं हूं एरोसनेका
2: एंड मी अल्फोंस
3: एंड मी लॉरेंस
4: एंड आई एम जोफ्री पोल।
0: आप सभी को जल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल दिवस के उपलक्ष में आज हम जल के बारे में बातचीत करेंगे। श्रोताओं, जल हमारे जीवन का सबसे जरूरी पदार्थ है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य जल पर ही निर्भर हैं। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। कृषि के लिए जल बहुत ही आवश्यक है और जल पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने में हमारी मदद करता है। तो आइए आगे और जल के बारे में हम बातचीत करेंगे।
1: प्रेम, श्रोताओं को कुछ कहना चाहता हूं। आज दुनिया भर में जल की कमी एक बड़ा मुद्दा बन गया है जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। 2.2 अरब लोगों को सुरक्षित पेयजल की पहुंच नहीं है और 4.2 अरब लोगों को सुरक्षित स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। जल संकट के कई कारण हैं। जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और जल संसाधनों का गलत उपयोग। जल संकट वर्तमान में कृषि उद्योग और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, जिससे खाद्य असुरक्षा, आर्थिक नुकसान और मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। अल्फोंस, क्या आप श्रोताओं को इसके बारे में आगे कुछ कहना चाहते हैं?
2: Surely, I would like to address on the water crisis issue. It is an important issue and we must make notice of this. I would like to put forward before you certain causes for the water crisis. Depletion of underground waters. Due to the overloaded usage of the underground waters, many of our cities are having no water. It is said that by 2050, we may not have water in many of the cities globally and especially in India. And the second major cause of the water crisis is climate change. Due to global warming, there is a over rain or drought. We hear especially about the cloudburst and sudden flood which affect our water storage underground as well as the surface. And we also should make note of this is population growth is another important cause for water crisis. There is a demand and supply issue, especially in urban areas. Due to overpopulation, we face this kind of severe problems. And another important cause is water pollution. Water pollution is causing scarcity of water to many of the cities. It is said that the waters in the sea and the rivers have been highly polluted. The waters in Ganga and Jamuna are unfit for drinking with high pollution indicators. Another important factor is inadequate infrastructures that cannot preserve water storage are also a major part of the water crisis. If we discuss, there are many issues. What do you say, Lawrence?
3: As my friends have rightly mentioned about the seriousness of the scarcity of potable water, don't you feel it is the duty and responsibility of every citizen to join hands in fighting this problem?

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: Agnail Radio.
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: And I am Geoffrey Paul.
1: आप सभी को जल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल दिवस के उपलक्ष में आज हम जल के बारे में बातचीत करेंगे। श्रोताओं, जल हमारे जीवन का सबसे जरूरी पदार्थ है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य जल पर ही निर्भर हैं। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। कृषि के लिए जल बहुत ही आवश्यक है और जल पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने में हमारी मदद करता है। तो आइए आगे और जल के बारे में हम बातचीत करेंगे।
2: प्रेम श्रोताओं को कुछ कहना चाहता हूं। आज दुनिया भर में जल की कमी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। 2.2 अरब लोगों को सुरक्षित पेयजल की पहुंच नहीं है और 4.2 अरब लोगों को सुरक्षित स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। जल संकट के कई कारण हैं: जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और जल संसाधनों का गलत उपयोग। जल संकट वर्तमान में कृषि उद्योग और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, जिससे खाद्य असुरक्षा, आर्थिक नुकसान और मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। अल्फोंस, क्या आप श्रोताओं को इसके बारे में आगे कुछ कहना चाहते हैं?
3: Surely, I would like to address on the water crisis issue. It is an important issue and we must make notice of this. I would like to put forward before you

0: नमस्कार दोस्तों, इनर वॉइस रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रेम और मेरे साथ है
1: मैं हूं एरोसनेका
2: एंड मी अल्फोंस
3: एंड मी लॉरेंस
4: एंड आई एम जोफ्री पॉल।
0: आप सभी को जल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: highlighted in Sustainable Development Goal 6, Clean Water and Sanitation for All. By practicing sustainability, let us commit ourselves to responsible water use and build a secure future for all.
1: प्रिय श्रोताओं, आप सभी ने अभी जल के महत्व, जल संकट और जल के समाधान के बारे में सुना है। जल जीवन का अमूल्य संसाधन है, हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए और जल की बर्बादी से निरंतर बचना चाहिए। जल है तो कल है, इस बात को हमें समझकर जल संरक्षण के लिए अत्यंत प्रयास करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको अवश्य इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिली होगी। अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं, इनर वॉइस रेडियो सुनते रहें, जल के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहें। जल है तो जीवन है।

0: Scott Agnell Radio.
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते।
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।
1: अच्छा।

0: नमस्कार दोस्तों, इनर वॉइस रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रेम और मेरे साथ है
1: मैं हूं एरोसनेक्का
2: एंड मी अल्फोंस
3: एंड मी लॉरेंस
4: एंड आई एम जोफ्री पोल।
0: आप सभी को जल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल दिवस के उपलक्ष में आज हम जल के बारे में बातचीत करेंगे। श्रोताओं, जल हमारे जीवन का सबसे जरूरी पदार्थ है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य जल पर ही निर्भर हैं। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। कृषि के लिए जल बहुत ही आवश्यक है और जल पर्यावरण को

है, हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए और जल की बर्बादी से निरंतर बचना चाहिए। जल है तो कल है, इस बात को हमें समझकर जल संरक्षण के लिए अत्यंत प्रयास करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको अवश्य इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिली होगी। अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं, इनर वॉइस रेडियो सुनते रहें, जल के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहें। जल है तो जीवन है।

0: Enniscott Agnail Radio.
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: Escott Agnell Radio.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं इन अ वॉइस रेडियो।
2: मैं हूं एनोश।
3: और मैं हूं जेफरी।
2: तो जेफरी, आज मौसम कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, क्या कहते हो?
3: हाँ यार, आज कुछ बढ़िया सा सुनने का मन कर रहा है। पुराने एवरग्रीन सॉन्ग सुने क्या?
2: एवरग्रीन सॉन्ग्स? यार तूने मेरे मन की बात कह दी। आज सुबह से ही मेरा भी मन कर रहा था कि कुछ नॉस्टैल्जिक सुना जाए। तो क्या सुना जाए?
3: तू बता, तेरा फेवरेट कौन सा है?
2: मेरा तो यार एक ही सबसे फेवरेट सॉन्ग है एवरग्रीन्स में, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर।

0: ओ जेफरी, आज रेड शर्ट कैसे पहन के आया? तेरे पीछे कोई सांड नहीं पड़ा क्या?
1: अच्छा, तू खुद पीली पैंट पहन के आ सकता है और मैं रेड शर्ट पहनूं तो तुझे दिक्कत है?
0: यार पीले कलर में क्या दिक्कत है भाई?
1: दिक्कत? पीली पैंट पहन के पीला कद्दू लग रहा है।
0: अबे यार तू उससे लड़ता क्यों रहता है भाई? चल गाने सुनते हैं ना।

0: जुल्फे तेरी।
1: अरे यार पता, जब भी मैं यार चार पांच लोगों के बीच में खड़ा होता हूँ ना, मेरे से बोला नहीं जाता भाई, घबराहट सी होती है।
0: असलियत तो ये है, घबराता मैं भी हूँ
1: यार। हद है भाई, मैं किससे पूछ रहा हूँ यार।

0: सुन, अरे राजा सुन।
1: अरे यार भाई गाना तो मस्त था, लेकिन एक बात बता जेफ्री, तू आज काला काला क्यों नजर आ रहा है?
2: अरे काले तो क्या हुआ, दिल वाले है बेटे, इस पे गाने बने हुए, गाने समझा गया?
1: अरे भाई गुस्सा मत कर यार, स्टूडियो का लाइट चला गया था, तू मेरे को दिखा नहीं। चल कोई नहीं, गाने सुनते हैं, यही वाला गाना बजा दे।
3: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं, या अल्लाह काले से डर गए क्या?
4: हमें काले हैं

पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: अच्छा अनुज, पता चला दिल वाले हम दिल वाले। अच्छा ये बता, तेरे लास्ट ईयर एग्जाम में कितने नंबर आए थे?
1: जितने भी आए हो, पास तो हो गया था ना। लेकिन आज क्यों पूछ रहा है? एग्जाम तो एक साल पहले था।
0: अरे तेरी शक्ल देख के लग रहा है तू कोरा कागज देख के आया होगा।
1: एटलीस्ट कोरा कागज दिया था, तेरी तरह फादर पे एस से लिखने बोला था और काऊ पे लिख करके तो नहीं आया ना।

0: और अनुष, मैंने गार्गी से सुना है कि तेरे को भूतों से डर लगता है।
1: नहीं नहीं भाई, मुझे भूतों से, अंधेरे से, सुनसान इलाकों से किसी से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है वो बस तेरी शक्ल से।

0: क्या देखता रहता है भाई जेफरी, जाके बात कर रहे हैं ना उससे।
1: नहीं यार, मुझे शर्म आती है।
0: तो दोस्त, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बस देखते रहो, देखते ही रहो, हजार चाहे लाख बार देख लो, कुछ नहीं होगा जब तक बात नहीं करोगे।

0: अरे अनुष, तूने वादा किया था।
1: क्या वादा किया था?
0: जिम ज्वाइन करेंगे भाई, जिम।
1: यार अगले महीने से करेंगे ना, प्लीज।
0: तू जिस दिन अपना वादा पूरा करेगा ना, उस दिन हम पहाड़ी रखेंगे।
1: पहाड़ी? अरे नहीं भाई नहीं, अगले महीने से पक्का चलेंगे।

0: वाह क्या गाना था। अच्छा अनुष ये बताओ ये निब्बा निब्बी क्या होता है?
1: अरे ये सातवीं आठवीं कक्षा के लड़का लड़की होते हैं ना, एक दूसरे को ऐसे कॉल पे बोलते रहते हैं, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने क्या किया, या सोना मोना, ये सब। तो इन लोग को निब्बा निब्बी बोलते हैं।
0: अरे इन पर्सन तू जानते है क्या किसी निब्बा निब्बी को?
1: हाँ हाँ अपनी क्लास में तो है यार, एक दो है मैं जानता हूँ। लेकिन तू ये सब पूछ क्यों रहा है?
0: अरे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं 1970 से शुरू हो गया था। इसका एग्जांपल तेरे को ये गाना सुन के पता चल जाएगा।

0: बस यार भाई बहुत हो गया ये शोना मोना।
1: यार ये शोना मोना तो ठीक है, पर इन सब के बीच में जब दूरियां बढ़ जाए तब क्या करना चाहिए?
0: तब तो भाई मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, ये गाना सजेस्ट कर सकता हूँ, बहुत ही प्यारा गाना है।

0: नमस्कार दोस्तों, इनर वॉइस रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रेम और मेरे साथ है
1: मैं हूं एरोसिनेका
2: एंड मी अल्फोंस
3: एंड मी लॉरेंस
4: एंड आई एम जोफ्री पॉल।
0: आप सभी को जल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल दिवस के उपलक्ष में आज हम जल के बारे में बातचीत करेंगे। श्रोताओं, जल हमारे जीवन का सबसे जरूरी पदार्थ है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य जल पर ही निर्भर हैं। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। कृषि के लिए जल बहुत ही आवश्यक है और जल पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने में हमारी मदद करता है। तो आइए आगे और जल के बारे में हम बातचीत करेंगे।
1: प्रेम, श्रोताओं को कुछ कहना चाहता हूं। आज दुनिया भर में जल की कमी एक बड़ा मुद्दा बन गया है जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। 2.2 अरब लोगों को सुरक्षित पेयजल की पहुंच नहीं है और 4.2 अरब लोगों को सुरक्षित स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है।

0: मंजिले अनलिमिटेड।
1: नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे शो
0: मंजिले अनलिमिटेड।
1: जितना अटपटा ये शो है उस

देसी स्वाद कैफे की स्टार डिश है मैगी मिल्कशेक। मजेदार क्रीमी मिल्कशेक के ऊपर टॉपिंग है मसालेदार वेजिटेबल मैगी की, जिसमें आपको ढूंढने पर मिलेंगे कटी हुई सब्जियां भी। भाई हम में तो दम नहीं है ऐसे डेडली कॉम्बिनेशन कभी ट्राई करने का, और अगर आप में है तो हमें जरूर जानकारी दें ताकि हम भी जान सकें आगे।

0: हाय, स्वागत है आपका फूड डिजास्टर्स पे। मैं किससे बात कर रहा हूँ?
1: हाय मैडम, मेरा नाम गार्गी है और मैं आपको ना अपने एक फूड डिजास्टर एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैं क्या बता

0: की है, आप जो भी बताएं।
1: नादिर, मैं ना दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पे ना पास ही में एक वैरायटी समोसे वाले की दुकान है, और वो वैरायटी समोसे इतनी वैरायटी पे जा चुके हैं कि वो चॉकलेट समोसा बना रहे हैं। अब उस चॉकलेट समोसे को खाने पे इतना गंदा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सोच रहे हो, समोसा जो एक चटपटा है जिसके साथ चटनी मिलती है, हरी चटनी।

0: नमस्कार दोस्तों, इनर वॉइस रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रेम और मेरे साथ है
1: मैं हूं एरोसनेक्का
2: एंड मी अल्फोंस
3: एंड मी लॉरेंस
4: एंड आई एम जोफ्री पॉल।
0: आप सभी को जल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल दिवस के उपलक्ष में आज हम जल के बारे में बातचीत करेंगे। श्रोताओं, जल हमारे जीवन का सबसे जरूरी पदार्थ है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य जल पर ही निर्भर हैं। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। कृषि के लिए जल बहुत ही आवश्यक है और जल पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने में हमारी मदद करता है। तो आइए आगे और जल के बारे में हम बातचीत करेंगे।
1: प्रेम, श्रोताओं को कुछ कहना चाहता हूं। आज दुनिया भर में जल की कमी एक बड़ा मुद्दा बन गया है जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। 2.2 अरब लोगों को सुरक्षित पेयजल की पहुंच नहीं है और 4.2 अरब लोगों को सुरक्षित स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। जल संकट के कई कारण हैं, जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और जल संसाधनों का गलत उपयोग। जल संकट वर्तमान में कृषि उद्योग और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, जिससे खाद्य असुरक्षा, आर्थिक नुकसान और मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। अल्फोंस, क्या आप श्रोताओं को इसके बारे में आगे कुछ कहना चाहते हैं?

0: नमस्कार दोस्तों, इनर वॉइस रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रेम और मेरे साथ है
1: मैं हूं एरोसनेका
2: एंड मी अल्फोंस
3: एंड मी लॉरेंस
4: एंड आई एम जोफ्री पॉल।
0: आप सभी को जल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल दिवस के उपलक्ष में आज हम जल के बारे में बातचीत करेंगे। श्रोताओं, जल हमारे जीवन का सबसे जरूरी पदार्थ है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य जल पर ही निर्भर हैं। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। कृषि के लिए जल बहुत ही आवश्यक है और जल पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने में हमारी मदद करता है। तो आइए आगे और जल के बारे में हम बातचीत करेंगे।
1: प्रेम, श्रोताओं को कुछ कहना चाहता हूं। आज दुनिया भर में जल की कमी एक बड़ा मुद्दा बन गया है जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। 2.2 अरब लोगों को सुरक्षित पेयजल की पहुंच नहीं है और 4.2 अरब लोगों को सुरक्षित स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। जल संकट के कई कारण हैं: जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और जल संसाधनों का गलत उपयोग। जल संकट वर्तमान में कृषि उद्योग और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, जिससे खाद्य असुरक्षा, आर्थिक नुकसान और मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। अल्फोंस, क्या आप श्रोताओं को इसके बारे में आगे कुछ कहना चाहते हैं?
2: Surely, I would like to address on the water crisis issue. It is an important issue and we must make notice of this. I would like to put forward before you certain causes for the water crisis. Depletion of underground waters. Due to the overloaded usage of the underground waters, many of our cities are having no water. It is said that by 2050, we may not have water in many of the cities globally and especially in India.

तू इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांग जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने को। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: इंडिया दिल से।
1: गुड मॉर्निंग इंडिया, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूँ रॉबिन्सन। यहाँ पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहाँ पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
0: दिल से।
1: दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा टाइम इज मनी, लेकिन क्या टाइम सच में मनी है? टाइम केवल पैसे से ही नापा जा सकता है? क्या समय की हमारे लिए कोई और अहमियत नहीं है? एक कहानी मुझे आज यहां पर याद आ रही है, बल्कि एक सचमुच में घटा वाकिया है, और इस वाकिये के जरिए हम देखेंगे कि किस प्रकार समय की जो परिभाषा है टाइम इज मनी, वो हमारे जीवन में बदल सकती है। एक बार एक नौजवान किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया। उस जगह पर तो अपने सभी सर्टिफिकेट साथ में लेकर तैयारी करके उस जगह पे पहुंच गया। अब वहां पहुंचने के बाद कुछ देर इंतजार करने के बाद जो इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर लोग थे, उन्होंने उसे कैबिन में बुला लिया। अंदर जाकर वहां पर सभी लोग जो इंटरव्यू लेने वाले थे बैठे हुए थे, उनके सामने इसने अपनी फाइल बढ़ाई और बैठ गया। इंटरव्यू लेने वाले लोगों ने जब फाइल खोलकर देखी तो वे काफी खुश हो गए और मन ही मन इसे नौकरी देने का उन्होंने निर्णय कर लिया। फिर उनमें से जो उनका बॉस था, उन्होंने उससे पूछा, आपके इस पढ़ाई के पीछे किसका योगदान है? आपने कैसे इतनी सारी पढ़ाई की? क्या आपके पिता आपको मदद करते थे? तो उस व्यक्ति ने थोड़ी देर मौन रहकर उन्हें कहा, नहीं, मेरे पापा जो हैं वो तो पहले ही गुजर गए हैं, ये मेरे माँ का योगदान है। मेरी माँ कई जगहों पर जाकर बर्तन माँजा करती थी और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मुझे पढ़ाई करने के लिए मदद की। बॉस ने इसकी बातें सुनने के बाद उससे कहा कि देखो, नौकरी देनी है या ना देनी है ये बात हम कल डिसाइड करेंगे। तुम कल इसी समय आना और हम आपको बताएंगे कि नौकरी आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती। लेकिन उससे पहले आज जब तुम घर जाओगे तब जाकर अपने माँ के हाथों को साफ करना, धोकर साफ करना। इस लड़के को सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगी। क्या बात है, मुझे माँ के हाथ धोने के लिए कहा जा रहा है? क्या नौकरी पाने का ये कोई नया तरीका है? क्या है ये सब? और इस बातों को सोचते हुए वो घर चला गया। दूसरे दिन उसी समय वो लड़का उस कंपनी में वापस आकर बॉस से मिला और नौकरी के लिए दरखास्त करने लग गया।
2: In a voice, radio.
1: तब उस बॉस ने उससे कहा कि मैं नौकरी तो तुम्हें दूंगा, लेकिन क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें कल कहा था? तो लड़के ने कहा, हाँ मैंने किया, अपनी माँ के हाथों को मैंने कल धोया। और उस बॉस ने उससे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दिया, क्या मालूम पड़ा? उस लड़के ने कहा, मेरे माँ के हाथों में कई सारी जख्में हो गई थी, काम करते करते, मुझे पालते पालते उसने कभी अपने हाथों की परवाह नहीं की। मैं आज इस मुकाम पर जो पहुंचा हूं वो केवल और केवल मेरी माँ के त्याग के कारण है। मैं आज जो बनने वाला हूं या फिर बनना चाहता हूं उसके पीछे मेरे माँ का ही योगदान है। उस बॉस ने उस लड़के को देखकर उससे कहा, अगर मैं चाहता तो तुम्हें नौकरी कल ही दे सकता था, लेकिन मैं तुम्हें इस बात से वाकिफ कराना चाहता था कि तुम जो इस मुकाम पे पहुंचे हो वो तुम्हारे इन नंबरों के कारण, इन सर्टिफिकेट्स के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ के कारण है। और मुझे खुशी है कि मेरे कंपनी में एक ऐसा लड़का काम करने वाला है जिसे अपने माँ की कदर है। प्यारे दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें कई बातें बताती है। उस औरत को यदि हम ध्यान से उसके बारे में सोचे तो हम पाएंगे कि उसने अपने पूरे समय को अपने बेटे के प्यार के लिए कुर्बान किया। उसने अपना पूरा समय अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए लगाया और उस प्रकार उसने अपने प्यार को अपने बेटे से जताया। यह बेटा जब अपनी माँ के साथ, भले ही बॉस के कहने पे क्यों ना हो, माँ के साथ थोड़ा समय जब इसने बिताया, उसके हाथों को देखा, तो माँ के प्रति, अपने माँ के लिए उसका जो प्यार है वो उमड़ पड़ा। उसे ये मालूम हुआ कि उसकी माँ ने किस हद तक उससे प्यार किया है। प्यारे दोस्तों, कई बार जब हम अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में ही लगा दी है। इसका असर हमारे बच्चों पे होता है। हम उनके साथ दो पल प्यार से बिताते नहीं हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और आखिर में हमें पता चलता है कि जो बच्चे जिनके लिए हमने ये सब किया है वे भी अभी उस पैसे कमाने की साइकिल में चल पड़े हैं। और ऐसे में आखिरी समय में हम जब चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ हो, वे हमारे साथ नहीं होते हैं, क्योंकि वे भी समय के उसी चक्र में फंस गए होते हैं जहां पर समय को केवल पैसों में तोला जाता है। समय पैसों में तोलने की चीज नहीं है, समय रिश्तों और प्रेम के तराजू में तोलने की चीज है। इसीलिए दोस्तों, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज रिलेशनशिप, टाइम इज लव।
0: इंडिया दिल से।
2: Inner Voice, Miss Scott, Agnel Radio.

तू इतना घबराती क्यों है? अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध चल। अपने डर को थोड़ा कम करके तू थोड़ी सी हिम्मत बांध जा। बस एक कदम आगे बढ़ाकर उस लक्ष्मण रेखा को लांग जा। भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? भतेरे मिलेंगे ऐसे मोड़ मोड़ पर, कब तक इनसे छुपती रहेगी? अब बस भी कर अपनी बुजदिली, कब तक ऐसा करती रहेगी? सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। सिर उठाकर चलना सीख, मुंह तोड़ जवाब दे इस जमाने को। मैं तो एक कमजोर लड़की हूं, हटा अपने इस बहाने को। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। एक जीती जागती मिसाल बनकर निजात पा समाज की जंजीरों से। अच्छी तकदीर की दुआ मांगना बंद कर पीर फकीरों से।

0: Scott Agnell Radio.
1: Inner Voice, Miss Scott Agnell Radio.
2: दिल से।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉबिन्सन। आपका स्वागत है इंडिया दिल से में। यहां पर हम बातें करते हैं सीधे दिल से और ये जुड़ जाती हैं दूसरों के दिल से। यहां पे मिलते हैं दिल और दिलों में बस जाता है प्यार, और इसी प्यार के खातिर हम इस सेगमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं।
2: दिल से।
3: दोस्तों, कई बार ऐसी बातें होती हैं कि हम दूसरों की कमियां ढूंढने लग जाते हैं, हम दूसरों को नीचे खींचने लग जाते हैं और ढूंढ ढूंढ कर उनकी कमियों को उनके सामने लाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ यह कि हम अपने आप को उनसे बड़ा दिखा दें और उन्हें नीचे दिखा दें। दोस्तों, मुझे एक वाकया यहाँ पे याद आ रहा है जो कुछ दिनों पहले मैंने बाइबल में पढ़ा था। प्रभु ईसा मसीह अपने चेलों के साथ कहीं जा रहे थे और चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। उस गांव में पहुंचते हुए उनके एक दूसरे चेले ने, जो उसी गांव का बाशिंदा था, उन्हें अपने चेलों के साथ घर पे खाने पे बुलाया। और जब वे खाने के लिए उस घर में गए, प्रभु यीशु के चेलों ने बिना हाथ धोए खाना खाना शुरू कर दिया। बेचारे भूखे होंगे, कई किलोमीटर की, कई दिनों की यात्रा पूरी करके वे आए होंगे। जैसे ही उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया, जो आस पड़ोस के लोग प्रभु को देखने के लिए आए थे, उन्होंने आपस में भुनभुनाना शुरू कर दिया। देखिए, चेले एक तरफ खाना खा रहे थे और दूसरे लोग दूसरी तरफ भुनभुना रहे थे। और वे क्या बातें कर रहे थे कि ये कैसे लोग हैं जो बिना हाथ मुंह धोए खाना खाना शुरू कर दिए। उन्हें हाइजीन की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन बात यह थी कि उनके समाज में उन दिनों यह एक ट्रेडिशन था। यह उनके ट्रेडिशन की बात थी कि कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आए तो बिना हाथ धोए, बिना शुद्धिकरण किए हुए घर के अंदर जाकर खाना नहीं खा सकता था। और प्रभु यीशु के चेलों ने शुद्धिकरण की इस प्रथा को बिना पूरा किए खाना खाना शुरू कर दिया था। तो इसलिए वे सभी लोग जो वहां पे थे, इस बात से खफा होकर आपस में भुनभुनाने लगे और उन्होंने प्रभु से कहा कि ये कैसे चेले आपने रखे, आप उन्हें क्यों कुछ चीजें बताते क्यों नहीं है, उन्हें कुछ सिखाते क्यों नहीं है, वे बिना शुद्धिकरण किए हुए, बिना अपने आप को धोए हुए खाना खाना शुरू कर दिए। तब प्रभु ने उन्हें कहा कि मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य को केवल बाहरी रूप से नहीं अपितु अंदर से शुद्ध होना चाहिए।
1: Inner Voice Radio।
3: प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा वाकिया है, लेकिन इससे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। शुद्धिकरण केवल बाहरी रूप से करने से वो शुद्धिकरण नहीं कहलाता है, वो केवल स्वच्छता कहलाती है, वो एक हाइजीन का प्रोसेस बन जाता है, लेकिन शुद्धिकरण उसे हम नहीं कह सकते। इसके तीन पड़ाव हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो शुद्धिकरण के तीन पड़ाव हम सोच सकते हैं। पहले, विचारों का शुद्धिकरण। यदि हमारे विचारों में शुद्धि है तो वह शुद्धि हमारे शब्दों में भी आएगी। विचारों का शुद्धिकरण यानी हम कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स। वी हैव टू प्यूरिफाई आर थॉट्स एंड इंटेंशंस। यदि हमारे विचार, हमारे थॉट और इंटेंशन शुद्ध है, तो उसका अगला पड़ाव जो है, हमारे शब्द वे भी शुद्ध हो जाएंगे। विचारों का शुद्धिकरण हमारे शब्दों के शुद्धिकरण की ओर हमें बढ़ाता है। हमारे इंटेंशन का शुद्धिकरण हमारे आचारों के, हमारे एक्शंस के शुद्धिकरण की ओर हमें बढ़ाता है। तो देखिए, हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे शब्द शुद्ध होंगे, और शब्द शुद्ध होंगे तो आगे चलकर हमारे आचार यानी हमारे कार्यकलाप, हमारे एक्शंस भी शुद्ध होंगे। सो देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। वी सी प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स और इंटेंशंस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्ड्स एंड देन प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्शंस। और जब हमारे एक्शंस प्योर हो जाएंगे तो हम अपने एक्शंस के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा प्रेम बांटते फिरेंगे, और वहां पर हम देख सकेंगे कि किस प्रकार हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहते हैं। वहां पर सभी प्रकार की कमियों को हम भूल जाएंगे। यदि किसी के अंदर कोई कमी भी है तो हमारे कार्यों, विचारों और शब्दों की शुद्धि होने के कारण हम उस कमी को अच्छाई में बदल सकते हैं। हम अपने उस भाई को या बहन को उस कमी से उभरने के लिए मदद कर सकते हैं। और इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने आचरण में शुद्धता लाएं, ताकि प्रेम के हम साक्षी बन सके। तो ये थी दास्तानें मोहब्बत इंडिया दिल से में। कल फिर मिलेंगे एक नई दास्तां के साथ, एक नए विचार के साथ, जो हमें मोहब्बत में, प्रेम में, प्यार में आगे बढ़ते रखें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपके दोस्त, आपके होस्ट रॉबिन्सन को बाय बाय।
2: इंडिया दिल से।

0: नमस्कार दोस्तों, इनर वॉइस रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रेम और मेरे साथ है
1: मैं हूं एरोसनेका
2: एंड मी अल्फोंस
3: एंड मी लॉरेंस
4: एंड आई एम जोफ्री पोल।
0: आप सभी को जल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल दिवस के उपलक्ष में आज हम जल के बारे में बातचीत करेंगे। श्रोताओं, जल हमारे जीवन का सबसे जरूरी पदार्थ है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य जल पर ही निर्भर हैं। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल के बिना कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। कृषि के लिए जल बहुत ही आवश्यक है और जल पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने में हमारी मदद करता है। तो आइए आगे और जल के बारे में हम बातचीत करेंगे।
1: प्रेम, श्रोताओं को कुछ कहना चाहता हूं। आज दुनिया भर में जल की कमी एक बड़ा मुद्दा बन गया है जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है। 2.2 अरब लोगों को सुरक्षित पेयजल की पहुंच नहीं है और 4.2 अरब लोगों को सुरक्षित स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। जल संकट के कई कारण हैं। जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और जल संसाधनों का गलत उपयोग। जल संकट वर्तमान में कृषि उद्योग और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, जिससे खाद्य असुरक्षा, आर्थिक नुकसान और मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। अल्फोंस, क्या आप श्रोताओं को इसके बारे में आगे कुछ कहना चाहते हैं?
2: Surely, I would like to address on the water crisis issue. It is an important issue and we must make notice of this. I would like to put forward before you certain causes for the water crisis. Depletion of underground waters. Due to the overloaded usage of the underground waters, many of our cities are having no water. It is said that by 2050, we may not have water in many of the cities globally and especially in India. And the second major cause of the water crisis is climate change. Due to global warming, there is a over rain or drought. We hear especially about the cloudburst and sudden flood which affect our water storage underground as well as the surface. And we also should make note of this is population growth is another important cause for water crisis. There is a demand and supply issue, especially in urban areas. Due to overpopulation, we face this kind of severe problems. And another important cause is water pollution. Water pollution

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
4: ओ याद आया, याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice Radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize award ceremonies? The Nobel laureates receive 3 things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-carat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
11: Do you know? Do you know? Do you know?

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
4: ओ याद आया, याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम अ सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, seek medical advice, call in advance and tell your healthcare facilities provider of any recent travel or contact with travelers.
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
6: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
8: डू यू नो? डू यू नो?
9: हाय, दिस इज योर होस्ट शिखा। डू यू नो? डू यू नो अबाउट नोबेल प्राइजेस? हियर आई एम। ऑन 27th नवंबर 1895 Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice, a radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize Award ceremonies? The Nobel laureates receive three things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-karat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
8: Do you know? Do you know? Do you know?

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
1: ओ याद आया, याद आया।
4: बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी, आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम अ सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से, और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड, हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice Radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize award ceremonies? The Nobel laureates receive 3 things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-carat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
11: Do you know?

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
1: ओ याद आया याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
4: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
1: क्यों क्यों?
4: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
1: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
4: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
4: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम अ सो स्मार्ट।
1: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
5: अवॉइड टचिंग आईज नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
5: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
1: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
4: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस। Call in advance and tell your healthcare facilities provider of any recent travel or contact with travelers.
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
6: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
8: डू यू नो?
9: हाय, दिस इज योर होस्ट शिखा। डू यू नो अबाउट नोबेल प्राइजेस? हियर आई एम। ऑन 27 नवंबर 1895 Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice Radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize Award ceremonies? The Nobel laureates receive three things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-karat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
8: Do you know?

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
4: ओ याद आया, याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम अ सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड, हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know? Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice, a Radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize Award ceremonies? The Nobel laureates receive three things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18 karat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
11: Do you know? Do you know? Do you know?

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
1: ओ याद आया, याद आया।
4: बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी, आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट

0: आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
2: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
3: और मैं भी।
4: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम ए सो स्मार्ट।
5: बच्चों, जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से, और बार बार हाथ जरूर धोना।
2: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
2: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटेमिनेटेड, हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
5: बच्चों, ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
2: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
4: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
2: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस। Call in advance and tell your healthcare facilities provider of any recent travel or contact with travelers.
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
6: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
8: डू यू नो
9: हाय, दिस इज योर होस्ट शिखा। डू यू नो अबाउट नोबेल प्राइजेस? हियर आई एम। ऑन 27 नवंबर 1895 Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice, a Radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize Award ceremonies? The Nobel laureates receive 3 things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-karat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate, more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
8: Do you know?

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
4: ओ याद आया, याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम अ सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice, a radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize award ceremonies? The Nobel laureates receive 3 things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-carat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
11: Do you know? Do you know? Do you know?

0: रहे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
4: ओ याद आया, याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज़ में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलिडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी, आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम ए सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड, हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know? Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice, a Radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize award ceremonies? The Nobel laureates receive three things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-carat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
0: Do you know?
11: Do you know?

0: प्यारे हैं।
1: अभी तक मस्ती कर रहे हो तुम लोग? स्कूल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, जल्दी बंटी बबली, जल्दी करो।
2: मम्मी आज हॉलीडे है।
3: मम्मी आपको पता नहीं आज हॉलीडे है?
1: हॉलीडे किस चीज के लिए?
3: करोना करोना करोना करोना करोना करोना।
4: ओ याद आया, याद आया। बंटी की मम्मी, आपको पता है आज स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। ये क्या वायरस फैल रहा है? मैं कल न्यूज में सुन रही थी कि ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है और इस वायरस से बचने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई और लगता है बच्चे इसी हॉलीडे का फायदा उठा रहे हैं। अरे बंटी की डैडी आप?
5: हाँ, वर्क फ्रॉम होम है।
4: क्यों क्यों?
5: आजकल आपको पता ही है वायरस फैला हुआ है, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट इज अ पैंडेमिक।
4: हैव दे डिस्कवर्ड एनी वैक्सीन्स और मेडिसिन्स फॉर इट?
5: अब तक तो नहीं है, बट आगे देखते हैं। इसलिए यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस।
1: इसलिए तो मैं बोलती हूँ हाथ अच्छे से साबुन से धोना है।
3: हाँ मम्मी, मैं हमेशा साबुन से हाथ धोती हूँ और सैनिटाइजर भी लगाती हूँ, वो नींबू वाला।
2: और मैं भी।
5: मेरे बंडियो बबली, यू हैव बिकम सो स्मार्ट।
4: बच्चों जहाँ ज्यादा लोग हो वहाँ नहीं जाना और हाथ भी नहीं मिलाना किसी से और बार बार हाथ जरूर धोना।
3: ओके आंटी।
1: अवॉइड टचिंग आईज, नोज एंड माउथ।
3: क्यों मम्मी?
1: हैंड्स टच मेनी सर्फेसेस एंड कैन पिक अप वायरसेस। वंस कंटामिनेटेड हैंड्स कैन ट्रांसफर द वायरस टू योर आईज, नोज एंड माउथ। फ्रॉम देयर द वायरस कैन एंटर योर बॉडी एंड मेक यू सिक।
4: बच्चों ज्यादातर आप घर पे ही रहो, घर बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंडोर गेम्स खेलो और हेल्दी खाना खाओ, है ना?
3: अरे मम्मी, मेरे फ्रेंड्स तो कल ही अब्रॉड से आए हैं, क्या मैं मिलने जाऊं?
5: नहीं बेटा, नो गोइंग आउट।
3: मैं तो मजाक कर रही थी।
6: इफ यू डेवलप फीवर, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सीक मेडिकल एडवाइस, कॉल इन एडवांस एंड टेल योर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइडर ऑफ एनी रिसेंट ट्रेवल और कॉन्टेक्ट विद ट्रेवलर्स।
7: Even though schools and colleges are closed, learning and education never stops. We can continue teaching at home. This holiday, read books, help mummy and help daddy, stay hygienic and stay safe. And don't forget to wear a mask.
8: और आप सुन रहे हो आपका चहीता शो बायोस्कोप।
9: Hi, this is your host Shikha. Do you know about Nobel Prizes? Here I am. On 27th November 1895, Alfred Nobel signed his last will and testament, giving the largest share of his fortune to a series of prizes in physics, chemistry, medicine, literature, and peace. 923 laureates and 27 organizations have been awarded the Nobel Prize between 1901 and 2019. There are some years when the Nobel Prizes have not been awarded. The total number of times are 49, most of them during the World War I and II. Do you know how many times women have been awarded Nobel Prize?
10: In a Voice Radio.
9: Between 1901 and 2019, the Nobel Prize and Prize in Economic Sciences have been awarded 54 times to women. Do you know how many things the Nobel laureates receive at the Nobel Prize award ceremonies? The Nobel laureates receive 3 things: a Nobel diploma, a Nobel medal, and a document confirming the Nobel Prize amount. Each Nobel diploma, a unique work of art created by foremost Swedish and Norwegian artists and calligraphers. The Nobel medals are handmade with careful precision and in 18-carat recycled gold. Do you know how much of money that the Nobel Prize laureates receive? Alfred Nobel left most of his estate more than 22.5 crores at that time, and today the value is more than 1252 crores. The income from the investments was to be distributed annually in the form of prizes. The Nobel Prize amount for 2019 is a set of Swedish kronor, that is 9 million per full Nobel Prize, which means more than 6.5 crores in Indian rupees. To know more and more, wait for the next episode. Until then, goodbye.
11: Do you know? Do you know? Do you know?